मैं दीर्घ रोग है, हमें बहुत भयानक रोग है, यदा इलाज नहीं है कोई, हमें तो बटना चाहिए। जोड़ा हमें तो रोग आ जाता है, सतगुरु पातशाह कहते वह जीवन बर्बाद हो जाता है। तो हमें गुरु जी के दर पर आके खत्म होती है। गुरु वैद है, हमें जो रोग खत्म करता है। साध संगत दे विच आके हौमै दूर हुंदी है, निम्रता आउंदी है, अपने अंदरों हौमै नूं मारन दा तरीका पता लगता है। जिन्हें अपने अंदरों हौमै नूं मार लिया, समझ लो गुरु दे दर ते सती हो गया। लड़ मरना तै सती होण, गुरमुख पंथ पूर्ण परतापै। एक ते युद्ध दे विच लड़दे लड़दे मर जांदे है, शहीद हो जांदे ने। फिर उन्हां दे नाल पति दे नाल पति नूं सती हो पत्नी नूं सती होना पैंदा सी। किसे कारण करके पति मर गया, पत्नी नूं भी नाल ही मचना पैंदा सी। उहदी इच्छा नहीं सी मचण दी, नाल जबरदस्ती उहनूं बन्न के फड़ के मचदी हुई चिखा दे विच पाया जांदा सी, सती कीता जांदा धक्के नाल। ते जिहदी इच्छा ही नहीं सती होण दी, उन्हों धक्के सती करता, फिर सती किवें हुई? सतगुरु पातशाह कहते सती नहीं है, वह जबरदस्ती कतल किया गया। पूर्ण प्रताप वाला भाव धर्म वांगू अटल प्रताप वाला है। इधर सतियां अग्ञान ते सूरमे हंकार आसले मरते हैं, पर गुरमुख सूरमे ते सती हौमै तो मर के अटल पदवी में पहुँचते हैं। गुरमुखा ने हौमै मार ली, हौमै मार के समझ लो गुरु के दर से सती हो गए, अपने आप को कुरबान कर लिया, कुरबान करके प्रवान हो गए। फिर अखीर में निचोड़ कढ़ दिया, कहिंदे सच सिदक सच पीर पछापै। जिथे सच्चा है, जिथे सिदक है, जिथे भरोसा है, उस सच के रास्ते तुरन वाला, सिदक रखण वाला, भरोसा रखण वाला गुरसिख गुरु के दर से प्रवान हो जाता है। सच्चा पीर एक गुरु नानक है, गुरु नानक के दर नाल जुड़न वाला, गुरु नानक की सिक्ख्या से तुरन वाला, यह सती है। इत सती का भाव अग विच मचना नहीं है, सती का भाव है गुरु के बचनों अपने जीवन में कमाना, अपने अंदरों हौमै मारनी, अपने अंदरों विकारों खत्म करना, यह सती होना है। सतगुरु पातशाह जी ने अमृतमई बाणी के सती होने वालों मना किया, अग विच सड़ के नहीं मरना। सानू मर्यादा दसी पातशाह जी ने कि पति पत्नी के रूप में विचरद्या जेकर एक जना दुनिया छड़ के चलिया जाता है तो दूजे ने उहदे सेवे विच मचना नहीं, अपने जीवन नूं जिउणा है। यह गुरमुखा दी रहत है। तख्त श्री अकाल तख्त साहब तो प्रवानित की हुई सिख रहत मर्यादा विच बचन लिखा होया है।

आसा दीवार दी 12वीं पौड़ी ते इस नाल जुड़े हुए साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ते गुरु अंगद देव जी महाराज दे पावन पवित्र श्लोक। पहला श्लोक साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा है और आप फरमान करदे ने, दुख दारू सुख रोग भया जां सुखता न होई। जीवां लई दारू दुख बनिया होया है, भाव जीव दुख तो प्रेरणा लेंदे ने, सुख तो नहीं। दुख दी चोट ही इन्हां नूं संभलण दा मौका देंदी है, सुख दे ते ए अपने आप नूं बेकाबू कर देंदे ने। और वाकई ये हकीकत है कि मनुख ने अज तक जितना दुख तो सीखे है, इतना किसे वड्डे तो वड्डे उस्ताद तो भी नहीं सीख सकया। दुख दियां चोटां मनुख नूं संभलण ते मजबूर कर देंदियां ने। पर दुख दारू है ऐसा प्रतीत कदों हुंदा है, ऐसी घटना कदों घटती है कुदरत वालों? सुख रोग भया, जद सुख रोग हो जान, सुख आलसी बना देवे, सुख दलिद्री बना देवे, सुख अयाश बना देवे, सुख बदमाश बना देवे, सुख ऐन संसार दियां तमाम कामनावां दे नाल ही जोड़ के रख देवे, ऐसी हालत दे जद सुख रोग बन जाए तां कादर करीम दी तरफों दारू दुख ही है। फिर दुख नाल बंदा संजम रखदा है खाण पीण दा, सुख दे ऐसा कोई संजम धारण करदा ही नहीं। बदपरेजियां खाण पीण

सुशासन जी, अमृत संचार शुरू हो चुका है। जिहड़े प्राणी गुरु वाले बनना चाहते हैं, अमृत संचार अमृत छकना चाहते हैं, वह माता गुजरी निवास के फस्ट फ्लोर के उपर उ अमृत संचार हो रहा है। जल्दी पहुंचने की कृपा करन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।

मुहि चात्रिक तुम भून तृप्तो मुख पर मुख पर हरा के आस मेरी जी किया प्राण पते लाड ले लाड लड़ाए सब मैं

हर कंठ नानक पुर हारी, हर कंठ नानक पुर हारी, हर कंठ नानक पुर हारी रे। वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु।

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

ओंकार तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जैत सरी महला पंजवां कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कबनी हां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूझे ताकि निर्मल रीत कोई जाने कवन ईहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूझे ताकि निर्मल रीत रहा मात पिता बनता सुत बंधप इष्ट मीत

पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंतः को नाशाय मुक्त लम्बा मुक्त माल कनक लाल हीरा मनोरंजन की माया

हास्तरासयासुभ पवन तेज धनी भूमन चतुरंगा संग न चालिहो इन मैं कछुऐ ऊठ सधायो नंगा। हर के संत प्रै प्रीतम प्रभु के प्रभु ते हर के संत प्रै प्रीतम प्रभु के तां कै हर हर गाइऐ नानक इहां सुख अगै मस आगै मुख उजल संग संतन कै पाईऐ। हर के संत प्रै प्रीतम प्रभु के तां कै हर हर गाइऐ नानक इहां सुख आगै मुख उजल संग संतन कै पाईऐ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

सत संगी जनों, आप जी ने सतगुरु जी दे घर दे कीर्तनीए गुरसिखा पासों अमृत गुरबाणी का कीर्तन श्रवण किया है, जो पिछले दिनों तो शहादतों के दिनों नूं समर्पित सरबंस दानी आपे गुरचेला

0: प्यारे श्रोतियों, पिछले हफ्ते अपन विचार कर रहे थे सिख की विरसे अंदर एक स्त्री का स्थान अते एक अणजम्मी धी की दर्दा भरी पुकार। मां मेरिए मैनू भी वीरिया वांग जग देख लेंदे। आप जी दियां कालां तो इंज लग रहा है कि इस मजमून ने बहुत सारे हिरदिया नूं टुंबिया है। साडी कोशिश होवेगी कि आउण वाले प्रोग्रामां विच इहो जिहे होर सभ्याचारक विशेयां ते रोशनी पाई जाए।
1: अगस्त 8 दा दिन सिख इतिहास विच मोर्चा गुरु का बाग दे नां नाल याद कीता जांदा है। अज दा प्रोग्राम इस मोर्चे दे शहीदां दी याद नूं समर्पित है। पर पहलां सरवण करो गुरु अमरदास साहिब जी दा ए शब्द जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 314 उपर अंकित है।

गुरु के बाग दे मोर्चे दौरान एक बड़ी अर्थ भरपूर घटना वापरी जदो के गोरखी सिपाही ने निहत्थे अते शांतमई अकालिया नू मारन कुटन तो इनकार कर दिता। इन्हां ने कहा कि असी बहादुर सिंघां नाल मिलके जंगां लड़े हां, विरोध विच हथ उठाउण तां वी कोई गल होवे, एवें निहत्थियां नू कुटना सिपाही नू नहीं चोकदा अते साडी जमीर अजिहा करन दी इजाजत नहीं दिंदी। हुक्म अदूली दे फलस्वरूप इन्हां गोरखियां नू कोर्ट गार्ड दे हवाले कीता गया अते बिना किसे किस्म दी पेमेंट कीते नौकरियों जवाब दे के घरां नू तोर दिता गया।

0: केवो दी रंगीली धरती दे वसनीक श्रोतियो, तुसी ए प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नु पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

सूरमा के नाम कर्ण वाला, पैदा लाल माता विरली करे कोई कोई, हर कोई अपनी पंड नु चुकराए, पंड किते दी तीर ते तरे कोई कोई, मिठा बोलिया तो दुनिया खुश हुंदी, ते कौड़ा बोलिया किसे दा जरे कोई, खातर अपने मर्दी कुल दुनिया ए पर देश ते कौम लई मरे कोई कोई, कोई। तन हन ऐसिया मावा जिन्ना ने अपनी पुख तो अजिहे सिंघा सूरमिया नु जन्म दिता, जिन्ना बारे किसे ने ठीक ही किया है, पै जरा ना गुरु दे खालसे नु सदा लंघदा मौत नाल खै खै के, जदों जी चावे आज भी दर साडे लंघे खालसा मौत नु कह कह के, फिर लखां नु वेख्या जंग कर दे होनी कंधी ते लंघ गई बह बह के, कलगी सर दशमेश दे खालसे कोल होनी आवे ता सही पर कह कह के। अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान से पहला सिर हमले कर चुकिया सी, ते हुण चौथी बार इस करोड़ों रुपए का सन माल ते सैकड़े लड़कियां बन के दिल्ली तुर आए, शहर तो दूर होंदिया ही सिख उसके मगर लग गए, सिख रात छापे मार के दुरानी फौजा नु लुट दे, ते दिन चढ़न तो पहला ही जंगली जा लुट दे। इन्हां हमलों तो अब्दाली बहुत तंग आ गया, उसने सिखों का खुरा खोज मिटाउन की धार ली, उन्हें शहजादा तमूर अते जहान खान नु 10,000 फौज सने सेनापति छाप के सिखां तो बदला लैण लई तोर दिता है। जहान खान ने सिखां दी बर्बादी दा कम आरंभ कर दिता, इलाके विच पैर जमा के ओ अमृत तरते तरते आन पिया ते मनमानियां कर लगा।

बड़े रोड चाके बाबा दीप सिंह जी ने कहा, सिंगो मैं चलिया गया जोरता आजाद कराने वास्ते, आ जाओ जिन्हें मेरे मगर आने उड़ीकिया नहीं किसी ने। बाबा जी के वचन सुन के शेरों के दल भड़क उठे। एक तो दूजा पहला सिंह जी पाने लिये तैयार खड़ा सी, तलवारां सूत लईयां। जांदे होया रस्ते च होर भी अनेक सिंह जथे दे नाल मिलदे गए। सिंघां नूं नाल लैके बाबा दीप सिंह जी तरन तारण साहिब पहुंच गए। गुरु खालसा जी बाबा दीप सिंह जी

0: और थैले में लगी हुई थी। बसंत बन गया, केस शुरू हो गया, पर जो इतने आया आदि लिब टुट गई। मुड़ अग्नि के सेक में लगी तृष्णा, ये तृष्णा भी एक अग सी, एक ऐसी अग सी जिन्हों तू सारी जिंदगी होर बड़े ढंग वसीले वरत गए, क्योंकि अंदरला वसीला तेन याद नहीं चिड़िया कि किस वसीले नाल मैं उत्थे बचिया।
1: बड़ी चाहती
0: कहन लगे काहे भैया, फिर तो फूलिया फूलिया जब दस मास उर्द मुख रहता, सौ दिन कैसे भूलिया है। वो सारी कहानी भूल गई, वो कुछ भी चेता ना रखे, कम से कम तेन जे चेता हुंदा कि अंदरली अगन तो मैनू किसने बचाया, ता कम से कम एथे आके जे तेन तपत महसूस भी होई थी कृष्णा दी, ते तू कृष्णा बुझाना भी चाहता से, ता कम से कम तेन इना ते पता होना चाहिए सी अंदर किवें बुझीए। एथे भी उवें बुझ जाए, एथे तो वो तरीका ना महसूस किया, बुझाने की कोशिश की, तपत तेन सता रही पर बुझ नहीं सी रही। गुरु कहन लगे

और कृष्णा भी आप लोग को बुझाना चाहना है। लेकिन छुटकी लगी कृष्णा दूजी बदल में याद आ गई। कृष्णा तू तो बुझाना चाहना पर तेन बुझाना आ नहीं रहा। हालांकि गुरु आवाज दे के आख रहा सी कहंदा ओ भलिया इस दुनिया की दौलत पदार्थ नाल कृष्णा नहीं बुझनी। ए ते ज्यो ज्यो आएगा कृष्णा होर वधेगी। कहन लगा जी किवे बुझे गुरु आखन लगे कृष्णा बुझे हर के नाम मां संतोख होवे गुरबचनी। कहन लगे ए अग बुझनी सी ना बनावे अंदर तब जपदा रहो अग बसंत बन गई बाहर आके वसीला भुल गयो। कहन लगे हालांकि एक गल समझ कि जेड़ा प्रभु तेनू अंदर बचाने वाला है वह हुण तो कोई तेरे तो दूर नहीं हो गया। अगली लाइन का एक बड़ा डीप ख्याल है। कहन लगे जेड़ा प्रभु मातगर्भ में अपन सिमरन दे तहत में रखन हरे है जेड़ा तेनू मां तपत विच बचांदा है वह हुण तेरे तो दूर है। हुण क्यों तड़प रहे हुण कृष्णा क्यों नहीं बुझ रही। कहन लगे ओ कलिया जल थल मही अल पूरिया जल थल